जिहे नर राम भगत नह साधी जन्मत कासना मो अपराधी रहाओ मुझ मुझ गर्भ गए कीन बचया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मझिया।

कहे बड हम ही जिस है बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सतगुर मिले अंधेरा चूक इन विद्मान कलही है।

जहे अबोल तह मन न रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई। अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार। बटक बीज महरव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अलह लहंता अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद। उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अभंग अछेद।

भगत भंडार जी। परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक अनंत करह हर पूज।

काम क्रोध अंतर तन हिराय दुविधा छोड़ नाम निस्तरय सिफत सलाहन सहज आनंद सखा सैन प्रेम गोविंद आपे करे आपे बख्शिंद तन

पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेव हो जो उपजाय सो अलाख अपेव हो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

पहला गुरका शब्द मने मह मुंद्रा खिंथा खिमा हंडावाऊं जो किस करे भला कर मानो सहज जोग निध पावाऊं।

आई हों मैं कर्म किस विद नहीं जाने ज्यो कुंचर नहाए खाक सिर छाने जे वड भाग हो वह वड ऊचे नानक नाम जप है सच सूचे आसा महला चौथा।

कारण शोभा कंठ फूले प्रत्यक्षी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

जीवत दिसै तिस सर पर मरना मुआ होवे तिस नेह चल रहना। जीवत मुए मुए से जीवे हर हर ना।

कटे कन्हेरे सुख सहज आनंद घना गुर सेवा ते भय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा।

हर एक है बहुविध सृष्टि उपाई हुक्मे कार कराएं दा दूजा किस कहिए पाई।

क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर तेटिया सफल जन्म हमारा।

जात। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत दुख भी

जहई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़।

ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जाने, क्या एह जंत विचारे कही है जो तुद आख बखाने। जिसनो

भिष्ट छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद ना बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम।

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ।

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

मन कौ ए उपदेश दृढ़ हवै सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेट टूटह माया बंध बिसर न कब हूं जाई राव करत करत।

दुख अधिक जन्म मरण पज शरण सतगुर उबर है हर नाम रिज रमण गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत ता।

निर्मल मन करण कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

सुख होई गुरजेवड गुरजेवड दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा।

राम समर्थ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हौ कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

पयाण ज्योतिष पावे समरथ सोथिए हिलड़ा एहो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख अप

मिलहै जे सतगुर लागहै साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सच राती सच्चे शब्द सदा सुख पाए।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

जाए। सतगुर मिलै तनिर्मल होवै, हर नामो मन वसाय। नानक नाम ते आया सुखदाता, दुख विसरिया।

अनन सौ गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख को हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।

पंच पदे अपना कर मूस्त राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा कर दर राख है जे रस चाख है

जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अपने गुर मिलिया ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो।

पछात सफल जन्म जग आया हर रसचाथ सदा मन तृप्तया गुण गावै गुणी अगाह्या कमल प्रगा सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया।

चात्रक जल, जो चात्रक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाई, गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरिया पाए सुपहाई।

गुरपुरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोठ महला पंजवा। भूखे खावत लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाई है जित सिमरन दरगाह मुख।

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो।

अजहु सहिय दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो।

सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पागी जो

संत जपहो हर जपना हर संत चला हर नाले जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन।

है सब गावे हर हर उत्तम बानी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सत गुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

कर नजर मेल मिलाया। कहन कह सब कोए के वड्याखी है, हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है।

बिन गुर मूड भय है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफलो जन्म सना

हर हर हर हर भगत दृढ़ा वहो हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाहा हर हर हर

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै ना काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, दिन सह परम अंधेरा।

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

गए। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग, हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग। साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग। श्लोक कुटुंब जतन करण माया अनेक उदमहि।

तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुंब को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान इशनान ना

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला

सो धन गुरु शाबास है हर दे स्नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखी है कहो कित बिद जाई है हर हर तेरा नाम है हर खर्च